या योग मन तो दुला योग आयंग एलियो आयंग आयु हई मुलियो पैंग मुलियो गिने हुए सा गई मन तो दुला युग वोले पुए गई ले पुए गई तो गंगा चेतु।